पूरा परमात्मा जी ने तू रखे जिदे ते तू कृपा करें तिस दुख ना थी या ओनू ते दुख लग ही नहीं सकता दुख जेड़ा ओदे नेड़े जा नहीं सकता सुखा ही सुखां दी प्रवृत्ति है क्योंकि परमात्मा उत्थे तेरा बख्शिश परिया रहमत परिया हथ है ते जिथे परमात्मा तू होवे जा तू मेरे वल है

निर्धन को पाले, निर्धन को पाले, निर्धन को पाले, निर्धन को पाले, हाय हाय, निर्धन को पाले, गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवां वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाए खालसा रहनी दा नाए खालसा अमली जीवन दा नाए खालसा गुणा दा नाए उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह का आप जी ने चारे वीर बार सरवन किया है केवल बोल के लंघते हैं अज पंजवां निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैन पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लगा दे ए भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संगत जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लगा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करन वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने वो भी निर्धन नू पालना है सत संग अज पंजवां निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ये पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवां निर्धन नू पालन दी सेवा लैण

कोई अश्वमेध यज्ञ करे, अपने बराबर तोल के, अपने वजन दे बराबर तोल के सोना चांदी दान कर लवे, कोई प्राग दा इशनान कर लवे, पर परमात्मा दे नाम दे बराबर नहीं पहुंच सकते जप सतनाम श्री।

मेरा नाम ले दी तेरा काम हो जाएगा। इन्ना काम करी मेरा नाम ही चलता है, मेरा नाम ले दी तेरा काम हो जाएगा। पर ख्याल करो जे एक संसार दे विच किसे वड्डे मनुख दा जेड़ा कुछ भी नहीं, जेड़ा कुछ मनुखां ते सिर्फ हुक्म कर सकदा है, जेड़ा कुछ भी नहीं, जिसदे कोल कुछ हो सकदा है कुछ मनुखां नाल ज्यादा साधन होन, जे उसदा नाम लै के काम हो सकदे ने, जेड़ा फिर वड्डियां तो वड्डा शहनशाह है कि उसदा नाम लैके साडे काम नहीं हो सकदे। जब सतनाम श्री फिर उसका नाम लैके भी काम हो सकते ने। नाम लेना, उसकी याद विच रहना, उसके नाम नू विसारना ना, उसके नाम नू हिरदे विच उकर लेना, ते धर्मराज नू कह देना जिसने तैनू बिठाया मैं उसका बंदा। जब सतनाम श्री हो फिर ता धर्मराज दे भी अड़का नहीं लगना। जब सतनाम श्री वाई ते जदों धर्मराज नू भी पता लग गया ना जिसने मैनू बिठाया ए उस मालिक दा बंदा है, उसका नाम लै रहा है, ते ओ भी अगों हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा ते पता की बोलेगा, हो सेवक ठाकुर अविनाशी। जब सतनाम श्री मैं तुहाडा सेवक तुसी मेरे मालिक। इस करके कहिंदे नाम अमोल है पर की मना कोई जान दो। सतनाम श्री है।

ये जाएगा तन नाम अमोला। तन ते पाया होया चोला भी नाल नहीं जाना, छड़ जाएगा। जे जाएगा ए हर का चोला, जब सतनाम श्री।

दूसरे पादशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का है। गुरु साहब जी कहते ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिहा बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने कहंदे ने दोस्ती करनी है

परमेश्वर, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरसाहा दिसा जिस पास बैठे सोइए सबना दा विसा, जिद कुल बैठ के आदमी ओदे वर्गा हो जावे, सच्चे कुल बैठांगे ते सच्चे वर्गे हो जावांगे। इस करके दोस्ती करनी है, कच्चे दी ना करो, पक्के दी करो ते सच्चे दी करो, ताकि आप भी सच्चे

इस जोगी ने डोरा फिराया जेड़ा मेरे लंगर विचों प्रशादा शकेगा मैं उन्हों दो

जोग कहन लगा एक और फिर जाओ उसनु कहो मेरे लंगर विच आके प्रशादा छके मैं 10 साल का स्वर्ग देवांगा। जोगी दे चेले फिर पाए तिलकू दे घर गए बुआ खड़काया पाए तिलकू जी ने बुआ

एक इन्नी शक्ति दा मालिक है जेड़ा मेरे आखे नहीं लगदा जो कि आसन ला के बह गया रिधियां सिधियां प्राप्त सन उन रिधियां सिधियां दे

पर पाए तिल को उन्हों का मन गुरु नाल जुड़े है ते जिदा मन गुरु नाल जुड़िया हो चीजा लागे नहीं आंदी ओ भूत प्रेत बथेरा रौला पांदे ने पाए तिलकू बुआ कोल लंगर खा नहीं तो तेनू मार देंगे हुण जिस गुरु दी ओट पाए तिलकू ने लई ओ गुरु पाए तिलकू दी रखिया कर रहे है उन्हां भूतां प्रेतां नूं कोई एहो जी चीज पैंदी है जेड़ी चुक के पिछा सुट दी।

वो आखिर काया पाई दिल को दरवाजा खोल जो भी आप तेरे द्वारे आया पर हुन पाए दिल को ने बुआ नहीं खोले फिर क्या पाए दिल को बुआ खोल जो भी आप तेरे द्वारे चल के आया है चल के लंगर शाक मैं तेनू सारी जिंदगी दा स्वर्ग दिया भाई साहब ने बुआ

तेरे गुरु दा तेन वास्ता बुआता खोल। गुरु दा वास्ता सुने पाए दिल को जी उठ के बुआ खोले। गुरु दी गल ती गुरु दे प्यारे अपनिया जाना वार देंदे। गुरु दे चरणा तू कुर्बान हो।

तेरा गुरु केड़ा जिदे चरणा दे बदले तू स्वर्ग दी परवाह नहीं करता, जिदे चरणा दे नाल तू मन

आंदे किथे ने। भाई दिलकू जी कहन लगे ओ श्री अमृतसर रहंदे। जोगी ने कहा दिलकू चल फिर मेनू अपने गुरु को ले चल। भाई दिलकू जी ने खुशी

कुछ तमाशा देखने वाले कि चलो देखांगे जोगी उथे जाके की करदे। कुछ श्रद्धालु कुछ सच दे झूठ दा निस्तारा देखने वाले। बड़ा भारी संघ हो गया ए सारे लोग गढ़ शंकर तू श्री अमृतसर वाले तुर पे।

इस जोगी ने पाए दिल को दिनाल पाई, पाए दिल को गुरमुख है। जोगी ने भी तपस्या की थी पर मन रिधियां सिद्धियां विच लग गए। हुण पाए दिल को दिनाल दोस्ती की थी ते पाए दिल को रिधियां सिद्धियां दे रस्ते तू हटा के सच दे रस्ते वल लै तुरिया। इसे वास्ते सहबा ने कहा दोस्ती करनी उन्हां नाल।

ऐसे करो जिथे निवास को ते निभ सके, दोस्ती ओ दे नाल करो जिदे कोलो नुकसान ना उठाना पवे। ए ठीक है कि भला करो, भला करो जरूर, पर जे भले दी उम्मीद करनी ए भी मेरे नाल भला करे तो उथे भला करो जिथे

जे कोई आदमी अपनी बलि देवे ताए तूफान बंद होवेगा। हुण सारे लोग एक दूसरे वाल देखन लग पे कि केड़ा बलि दिंदे। मैं भगवे कपड़े पाए सन,

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है? उसकी बहुत सी कारें हैं, उसकी बहुत फैक्ट्री है, उसके बहुत से बंगले हैं। नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है, वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

प्यार नाल सुनियो की नहीं करदा कोई रचना वांझी रखी जाए पर कई दफा ऐसियां चीजां बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है ते आम जिन्हां सजना जां भैणां नू ताल सुर दी समझ ना होवे ते कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा हुंदा है जिहदे नाल चीज दा समुचा रस माणिया जांदा है। सो मैनू इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होगी जे भैणां जां वीर लय सुर दे अंदर बोल सकन ते इस चीज नाल बोलन ते नहीं तां प्यार नाल सरवण करना इस शब्द दे विचों बहुत कुछ मिलता।

वाला कट कट के अंतर की जान तू प्रभ मेरा अंतर जानी जान कट कट के अंतर की जान तू भले बुरे की पीर पछाण तू प्रभ मेरा अंतर जानी जान।

सरदा मन की पुए प्रभ मेरा अंतर जमी जान। मेरा प्रभु, मेरा अकाल पुरख, मेरा वाहिगुरु निरंकार सब कुछ जान दे। जीव दे मन अंदर की मनुख की चाहता है, मनुख की इच्छा की परमात्मा जान दे। जिदे

मानुक अब माने प्रभु मेरा अंत जामी जान। ओ प्रभु सब कुछ जान दे साहब आख देने जी की बिरथा होए सो गुरु पै अरदास कर। जे तेरे मन अंदर कोई पावनी है ना ते आके गुरु अग्गी अरदास कर, ओ गुरु पावनी पूरी कर दे वे। खाली चोली नहीं भेजेगा पर देवेगा, क्योंकि ये दरबार ही ऐसा है, इस दरबार अंदरों कोई खाली चोली नहीं गए। जो खाली चोली आए ने पर के गए ने, जो रोंदे आए ने हसते गए ने, ये तो दरबार ही ऐसा है। कौन खाली गए आप छोकर त्यास पक्को जरा। जे गुरु तेग बहादुर साहब।

जो साडे मन अंदर है तू जानना है। ते हे अकाल पुरख कृपा कर साडे मन दी इच्छावां भावनियां पूरियां कर दे। ऐसी अरदास असी सारे करिए कि पातशाह साडे मन अंदर इच्छा है कि तेरा नाम साडी चोली विच पवे। सब तो वड्डा नाम ही है ते जिन्हें नाम अपनी चोली विच पवा ले है रिद सिद्ध नाम है की दस हिरदियां सिद्धियां ते नाम दियां दासियां ने। असी नाम दी ही जाचना करिए जदों नाम मंग लांगे सब कुछ मिल जाएगा क्योंकि इधर आके सब कुछ असी मंगना है ते जो मंगांगे वो मिल जाएगा। जो मंगा है सो लेवे प्रभ अपने संतां देवे। ओ प्रभु अंतरजामी जानदा है अपने सेवकां नूं सिखां नूं संतां नूं सब कुछ देंदा है जिहड़ा आके की देती भरोसे दे नाल इस दर तों मंग लैंदा है। आओ सारे मिलके मंगिए।

सिद्ध विहुना चात्र को क्यों कर तृप्तावे। नाद पुरंग के बेदया सन मुख उठतावे, पावे लोभी कुसुम बांस का

सिमरन कबूल चूरे प्रभु के सिमरन कारज पूरे कारज पूरे। जिस नाम हृदय सोई वड राजा, नाम कितनी ऊंची दाद है। जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय से पूरे काजा। जिदे को नाम है ना संसार तो सब तो वड्डा राजा कोई भी, जिदे को नाम है इस पूरे काजा, उदे कार्य भी सारे पूरे हो जाते ने। ते नाल ए भी क्या गया है, कह कबीर निर्धन है सोई जा कह हिरदे नाम ना होई। ओ ते निर्धन है जिदे को नाम नहीं, जिदे को सिमरन नहीं, जिदे को नाम है सिमरन है, ओ राजा है, उदे कार्य भी पूरे नहीं।

साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण की, जिस शब्द अंदर सतगुरु जी सानू जोत दी पहचान दसते ने, पर तुसी तको साहिबां दा इतिहास पढ़ के कि साहिबां नू बचपन विच ही कितनी लगन सी। कहिंदे ने जदों बच्चियां नाल खेलदे प्रभु भगती दीआं गल्लां करदे ते बच्चे इकट्ठे हो के सतगुर दे इर्द गिर्द बह जांदे, साहिब जी सानू भी उस मालिक दीआं गल्लां सुनाओ। कहिंदे ने सारा सारा दिन बीत जाना, उन्हां बच्चियां ने सतगुर दे मुखो मिठे मिठे बोल सुन के अपने घर जाना भी भुल जाना। जिस वेले रात पैनी सतगुरु जी ने भैन जी नूं बेनती करनी, भैन जी ना तो मेरा चित करदा कि इन्हां बच्चियां तो दूर होवां ते ना ये बच्चे मेथों दूर हुंदे ने, ते तुसी किरपा करो रात दा भोजन असी कठे ही छकांगे कठे ही खावांगे, तुसी इन्हां लई भी भोजन तैयार कर लो। सो कहण तो भाव सतगुरु ने केवल ये बचन आख्या नहीं, पहले बचन नू कमाया कि सब अंदर परमात्मा दी जोत नू वेखण। छोटे छोटे बाल जो नगर दे विच रहण वाले ने, ओ जे घर विच आ के बह गए ने ते इको जगह बैठ के प्रसाद छकना है, किसी प्रकार का कोई पिन पेत नहीं रखना। इसलिए साहब कहिंदे ने भाई आओ आपां जोत वेखीए।

कि भाई इस संसार विच जेड़ा भी मनुख आया है उस अंदर जोत एक परमात्मा दी ही है, क्योंकि जोत तो बिना कोई भी इंसान नहीं है। धन गुरु अमरदास पातशाह का उपदेश है, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी तां तू जग में आए। ए गल वखरी है कि आपा जोत देख नहीं रहे, पर जोत तो बिना कोई भी नहीं, सारियां अंदर जोत परमात्मा दी है। हुण जोत नजर क्यों नहीं आउंदी, पांडे ने सवाल किया, पातशाह जे सारिया अंदर जोत है ते जोत नजर क्यों नहीं आउंदी। साहब कह लगे, पांडा जी गल इंज है कि दुनिया दे लोकां ने जात दी दीवार इतनी वड्डी कर दित्ती है कि सानू जोत नजर नहीं आउंदी। हुण जद सामने दीवार ही खड़ी हो जाए जोत किवें नजर आवे। इन्हें जोत है अंदर, पर ऐसे अंदर एक होमे दी जात दी दीवार भी खड़ी हुई है। जद तक वो दीवार नहीं गिरदी जोत नजर नहीं आउंदी, क्योंकि जोत तो अंदर ही है ना, बाहर नहीं है, जोत अंदर है। पर उस जोत नूं प्रगट करना है। वो जोत प्रगट किवें होवेगी? साहब कहिंदे ने जात ना पुछ जोत दी पहचान कर। ते जोत दी पहचान तां हो सकदी है आपां पहले जात भुल जाइए, आपां जात नूं छड़ दईए, ऊंच नीच छड़ दईए, अमीर गरीब छड़ दईए, वड्डा छोटा छड़ दईए। कते मन च ऐसा ख्याल ना आवे, कहिंदे ने फिर जोत दी पहचान हो सकदी है। साहिबा ने बाणी विच

सो ये बचन धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने। हुण तुसी ए देखो गुरु साहिबान ने कहा नहीं बल्कि इस नु कर दिखाया है। हुण करके भी ऐसा दिखाया है कि मेरी निगाह अंदर केवल जोत नु थां है, जात नु बिल्कुल नहीं। मैं जात नु मनदा ही नहीं, केवल जोत, क्योंकि मनुख दे अंदर जोत है ते मैं केवल जोत दी पहचान दसी है। हे गुरसिख, तू जिदे अंदर वेखे जोत वेख, क्योंकि जे परमात्मा ने तेनू संसार विच भेजे है ते अपनी जोत टका के, जे तेनू अखां दित्तियां ने ते केवल इसे लई कि तू परमात्मा दी जोत ही वेखे। मैं नहीं चाहना तू होर कुछ वेखे, केवल परमात्मा दी जोत ही वेखे। अज साडे अंदर फर्क क्यों पिया, असी जात वेखने आ, परमात्मा कहिंदा जोत वेखो। जात तक नहीं आ, जोत नजर नहीं आउंदी, जोत छिप जांदी है। इसलिए आपां हुण जोत दी पहचान किवें करनी है, गुरु नानक पातशाह अगे बेनती करिए, पातशाह तुसां ने जोत वेखी है ते सी भी तुहाडे सिखां साडे ते भी करो कृपा, असी जोत वेख सकी। साध संगत इको नगर दे रहण वाले धन गुरु नानक पातशाह, इत्थे ही रहण वाला ऐसा एक मनुख, एक व्यक्ति जिन्हों गुरु नानक पातशाह जद मिलदे कहिंदे पुरखा सुना की हाल है, किधर चले हैं, की काम करना है। कहन लगा महाराज काम की करना है, मैं लोकां दी उस्तत करना। ना की है तेरा, कहन लगा जी दाना। साहब कहन लगे तेनू पता है दाना किनू कहंदे ने, कहंदे नहीं महाराज, कहंदे ने दाना कहंदे नू सियाणे नू बुद्धिमान नू, कि तू सियाणा हो के उस्तत लोकां दी करने, आ मैं तेनू सच्चे मालक दी उस्तत करनी दसा। कहन लगी पातशाह तुहाडा मेरा मेल नहीं हो सकना, तुसी बेदी कुलभूषण बेदी अंश विचों ते मैं एक छोटी जी जात विचों, तुहाडा मेरा संग किवें हो सकदा। साहब कहन लगे क्यों नहीं हो सकदा, मैं तेरी जात ते नहीं पुछी, ना तेरी जात वेखी है, मैं ते तेरे अंदर जोत वेख के आवाज दिती है। जेड़ी तेरे अंदर जोत है ना, बड़ी निर्मल है। तेरे मेरे विच अंतर की है, आ दाने आ, मैं तेनू दाने तो मर्दाना बनावा। सोई मर्द मर्द मर्दाना, दाने तो मर्दाना बना दिता। कहन लगी पातशाह साडे विच दूरी उतनी ही है, ओदे विच फर्क नहीं पिया, दाने तो केवल मर्दाना बनाया, गल नहीं बनी, जात दी दीवार उथे ही खड़ी है। साहब कहन लगे भोलिया मैं भी गरा देना, दाने तो मर्दाना ते मर्दाने तो भाई मर्दाना, अज तो तू मेरा भाई होया, लै हुण तेरे ते मेरे विच अंतर काई ना है, तू मेरा भरा बन गए है, तू ते मैं एक हो गए हां, मैं जात दी दीवार भी गिरा दित्ती है, अज मैं तेनू अपना भरा बना लिया। क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने कहा नहीं बल्कि ऐसा कर दिखाया, सतगुरु दी बाणी है।

रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कुमाते। किते लिखिया के सिख ही ना आवे? बिल्कुल नहीं। हर किसी लिए, हर किसी नु आ जाए, कोई भी आवे, जेड़ा भी ना आवेगा अपनी कुलां दा उधार कर लवेगा। ऐसा हर बंदा। ते इस हर मंदिर अंदर तुसी वेख लो सतगुरु जी ने किन्ना किन्ना नु आवाज दे के नहीं बुलाया, जिन्हू समाज ने दुरकारिया, जिन्हू मंदिरों कढ़िया उन्हू हर मंदिर बिठा दिता। नामदेव मंदिर विच आके बैठा सी, भगती करन लगा, धर्म दे ठेकेदारा चुक के बाहर मारिया, तू शूदर नीवी जात विचो मंदिर विच बह के भगती करने बाहर कढ़ के सुट दिता। पर साध संगत ख्याल करना, नामदेव ने मंदिर दे पिछवाड़े बह के भगती करनी शुरू कर दिती, दूजा मंदिर नहीं बनाया। ते साडे विच की हुंदा, जे किसी प्रबंधक नू एक गुरुद्वारों कढ़ दईए, दूजा गुरुद्वारा बना लैंदा, कहिंदा की होया तू मैनू गुरुद्वारों कढ़िया, मैं एक होर गुरुद्वारा बना देंगा। पर नामदेव ने दूजा मंदिर नहीं बनाया। ओ मंदिर दे पिछवाड़े बह के कहन लगा, हे परमात्मा, मैं तेरा भगत, तेरी भगती करन आया, ते तेरे धर्म दे ठेकेदारा मैनू चुक के बाहर मारिया कि मैं नीवी जात विचों आ, इतना अन्याय मेरे नाल